कोहरा फिल्म से गीत आपने सुना, हेमंत कुमार का गाया हुआ, कैफी आजमी के बोल थे और हेमंत कुमार का संकेत।

दोस्तों, अब अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ परवरिश फिल्म से। आशा भोसले का गाया हुआ है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और धुन तैयार की है दत्ताराम वाडेकर ने।

दोस्तों, भोर सुहानी कार्यक्रम में अब अगला और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम साथ साथ हैं फिल्म से लिया है। प्रतिमा राव हरिहरन घनश्याम वासवानी का गाया हुआ, रविंद्र रावल की रचना है और राम लक्ष्मण का संगीत। दोस्तों, इस गीत के लिए कहना पड़ेगा कि माता पिता इस धरती पर ईश्वर का सबसे अनमोल रिश्ता है। उनका रिश्ता निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की ऐसी नींव होती है जिस पर इंसान का जीवन खड़ा होता है। वे हमें चलना सिखाते हैं, दुनिया दिखाते हैं। कितनी तकलीफें सहन करते होंगे जब हमें खुशी देते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है, जैसे जैसे उस रिश्ते में आता है, तब उसे उन रिश्तों की समझ आती है।

तो इस रचना को सुनने के बाद मैं तो यही कहूंगी कि समय रहते हुए इन रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी तीर्थ या पूजा पूरी नहीं होती। चाहे हम कितनी भी पूजा क्यों ना कर लें, कहीं भी चले जाएं, इनका इनको पूजा करना ही हमारा तीर्थ है। इसी के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत की राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: FM Rainbow 101.9.

0: FM Rainbow 101.9।
1: Well, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9। तो आज का दिन है बिल्कुल मीठा। कभी सोचा है दोस्तों, हमारे घर के बड़े कहते हैं कि कुछ काम से बाहर जा रहे हो तो मीठा खाकर जरूर जाया करें, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। जी हाँ, जब भी मीठे के बारे में बात करें तो सबसे पहले चॉकलेट। जी हाँ, चॉकलेट की याद आती है, क्योंकि आज है वर्ल्ड चॉकलेट डे। चॉकलेट नाम सुनते ही बचपन याद आ जाती है। स्कूल के लंच बॉक्स में मिलने वाली चॉकलेट, बर्थडे रिटर्न गिफ्ट्स, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो चॉकलेट, और कभी किसी से सॉरी बोलना हो तो भी चॉकलेट। चॉकलेट सिर्फ एक स्वीट नहीं है, ये इमोशंस की पैकेज है। आज के शो में हम चॉकलेट की हिस्ट्री, उसके हेल्थ बेनिफिट्स, फन फैक्ट्स और बहुत सारी मीठी बातें करेंगे। तो सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. You are listening to FM Rainbow 101.9. तो हाँ, वर्ल्ड चॉकलेट डे हर साल 7 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है. माना जाता है कि इसी दिन अराउंड ईयर 1550 चॉकलेट यूरोप में इंट्रोड्यूस हुई थी. उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया चॉकलेट की दीवानी बन गई. आज दुनिया भर में लाखों टन्स ऑफ चॉकलेट कंज्यूम की जाती है. बच्चे हों या बड़े, चॉकलेट हर एज ग्रुप की फेवरेट है. अब वक्त है एक सुपर स्वीट कहानी. सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, listeners. तो हाँ, हम बात कर रहे थे चॉकलेट की. तो चॉकलेट की शुरुआत सेंट्रल अमेरिका से हुई थी. उनके लिए चॉकलेट एक रॉयल ड्रिंक थी. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उस टाइम चॉकलेट स्वीट नहीं होती थी, उसमें शुगर नहीं होता था. कोकोआ को पानी और स्पाइसेस के साथ मिक्स करके एक कड़वी ड्रिंक बनाई जाती थी. और एक अमेजिंग फैक्ट यह है कि कोकोआ बीन्स को करेंसी की तरह यू

किया जाता था। इमेजिन अगर आज भी कोकोआ बीन्स करेंसी होती, सैलरी चॉकलेट में मिलती और एटीएम डायरी मिल्क निकलता। वाव, यूरोप में जब शुगर ऐड हुई तब चॉकलेट का टेस्ट बदला और धीरे धीरे ये दुनिया की फेवरेट डेजर्ट बन गई। आज चॉकलेट हर सेलिब्रेशन का पार्ट है, चाहे बर्थडे हो या फ्रेंडशिप के लिए हो या प्रपोज करना हो और सॉरी बोलना हो या ब्रेकअप, तब तो एक एक्स्ट्रा चॉकलेट की जरूरत पड़ती है यार। तो चलो इसी बात पर एक मीठा गाना हो जाए।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. सुहा, कभी सोचा है चॉकलेट बनती कैसी है? सबसे पहले कोकोआ ट्री पर कोकोआ पॉड्स उगते हैं और उन पॉड्स के अंदर कोकोआ बीन्स होते हैं। बीन्स के फर्मेंट के बाद फिर उसे ड्राई किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, उसके बाद ग्राइंडिंग से कोकोआ पेस्ट बनता है। मिल्क, शुगर और कोकोआ बटर मिक्स होती और फाइनली टेम्परिंग प्रोसेस के बाद मिलती है एक स्मूथ, शाइनी और डिलीशियस चॉकलेट। अब बात करते हैं चॉकलेट के टाइप्स की। मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, रूबी चॉकलेट। और अब सवाल है,

ये चॉकलेट क्या हेल्दी है? आंसर है यस, स्पेशली डार्क चॉकलेट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होती है। ये मूड इम्प्रूव करने में हेल्प करती है और साथ ही स्ट्रेस कम करने में भी मदद करती है, और लिमिटेड क्वांटिटी में हार्ट हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल मानी जाती है। लेकिन हर अच्छी चीज़ की लिमिट होती है। एक्सेस चॉकलेट का मतलब है एक्सेस शुगर और कैलोरीज, तो एंजॉय कीजिए लिमिट के साथ। आप सुनते रहिए, मुस्कुराते ही रहिए और अपनी लाइफ में स्वीटनेस बनाई रखिए। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

Well, welcome back, listeners. You are listening to FM Rainbow 101.9. तो हाँ, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत की जो न सिर्फ रिश्तों को जोड़ती है बल्कि दिलों को भी सुकून देती है। आज है ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, जिसे कई लोग लव और पीस डे के रूप में भी मानते हैं। इस दिन का संदेश बहुत ही सरल है, माफ करना सीखिए, प्यार बांटिए और शांति का रास्ता अपनाइए। कहते हैं माफी देना किसी दूसरे इंसान को आजाद करना नहीं होता है, बल्कि खुद को गुस्से और दर्द की खेद से आजाद करना होता है। तो आइए अगले एक घंटे तक प्यार, माफी और सुकून की बातें करते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM।

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोई योगराज को नहीं सिखाता है, वो घर पे आता है मुझसे सीख जाता है, मुझसे सीख के वो लोग को सिखा।

वेल दैट वॉज एन अमेजिंग सॉन्ग। तो दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पल जरूर आता है जब किसी की बात या किसी के व्यवहार से हमें दुख पहुंचता है। कई बार हम सालों तक उस दर्द को अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। लेकिन एक सवाल, सोचिए, जब सामने वाला शायद उस बात को भूल भी चुका हो, तब हम क्यों उस बोझ को उठाते रहते हैं? माफी का मतलब गलती को सही मानना नहीं होता है। माफी का मतलब होता है, मैं इस दर्द को अपनी जिंदगी पर और राज नहीं करने दूंगा। जब हम माफ करते हैं, तब सबसे पहले हम खुद को सुकून देते हैं। तो चलिए सुनते हैं अगला ट्रैक।

वेल वेलकम बैक लिसनर्स। वो था अमेजिंग गाना बाय श्रेया घोषाल जी और विजय प्रकाश जी का। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं, रिसर्च के मुताबिक जो लोग माफ़ करना सीख जाते हैं उनमें स्ट्रेस कम होता है और उनकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, बच्चे बड़े लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में ईगो कम और प्यार ज़्यादा होता है, और शायद इसीलिए बचपन हमें इतना खूबसूरत लगता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ समझ होती है, और जहाँ समझ होती है वहाँ माफ़ी होती है।

है और जहां माफी होती है वहां शांति अपने आप आ जाती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, माफ करना मजबूत इंसान की पहचान है। सोचिए अगर हर घर में लोग एक दूसरे को समझने लगे और हर दोस्त ईगो छोड़ दे और हर रिश्ता एक बार फिर से शुरू हो तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाती है ना। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला गाना, सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, listeners. तो हाँ, दोस्तों, आज अगर इस एक घंटे की बातों के बाद आपने सिर्फ एक इंसान को माफ करने का फैसला लिया है, तो या खुद को माफ कर दिया, तो समझिए आज का दिन सफल हो गया। याद रखिए, गुस्सा हमें अंदर से कमजोर बनाता है और माफी हमें अंदर से मजबूत बनाती है। प्यार बांटिए, मुस्कान बांटिए और सबसे जरूरी, माफी भी बांटिएगा। तो चलिए सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back listeners. तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस नाम को जिससे सुनते ही हर भारतीय क्रिकेट फैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, महेंद्र सिंह धोनी। आज हम मना रहे हैं MS धोनी जी का जन्मदिन। एक छोटे से शहर रांची से निकला हुआ एक लड़का जिसने सपने देखा और मेहनत किया और फिर दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसला हो तो भी मंजिल दूर नहीं होती। आज के इस बर्थडे स्पेशल में हम जानेंगे उनकी कहानी, उनके रिकॉर्ड्स, उनकी कैप्टनसी, उनके शांत स्वभाव के पीछे का राज और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि शुरू होने जा रहा है कैप्टन कूल द लेजेंड MS धोनी।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड, हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी में एक नया स्वर्णिम अध्याय आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता निर्माण में योगदान देगा। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत

0: ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के कन्या मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Speaking at a joint press conference with the Indonesian President, in Jakarta, Mr. Modi said, growing mutual trust has strengthened cooperation in defense, security and the maritime sector, with both countries agreeing to expand defense exchanges, disaster management cooperation and industrial collaboration.
2: Aaj humne defense exchange, disaster management aur industrial sahyog badhane par sahmati banayi. अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: Mr. Modi said the partnership is advancing across a wide range of sectors, including development, security, technology, culture and education, expressing confidence in the future of bilateral ties. He said a new golden chapter in the India-Indonesia partnership begins today.
2: Hum development, security, technology, culture aur education har kshetr mein mahatvapurna kadam badha rahe hain. Mujhe vishwas hai आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: The Prime Minister said an agreement signed today will make India's high quality and affordable medicines more easily available to the people of Indonesia. He added that India will contribute to the capacity building of Indonesian doctors and healthcare professionals. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, the Jammu and Kashmir Joint Awami Action Committee has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if their conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely

Well, welcome back, listeners. You are listening to Akashvani 101.9. तो हाँ, 2004 में धोनी ने टीम इंडिया के लिए डेब्यूट किया था। पहला मैच यादगार नहीं था, रन आउट और स्कोर सिर्फ जीरो, लेकिन असली चैंपियंस कभी एक हार नहीं मानते। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन्स की धमाकेदार इनिंग्स ने पूरे वर्ल्ड को ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 183 नॉट आउट। आज भी विकेट कीपर

के रूप में ओडीआई क्रिकेट की सबसे बड़ी इनिंग्स में से एक मानी जाती है। धोनी सिर्फ बैटिंग नहीं करते थे, वो कॉन्फिडेंस देते थे। 2007 इंडिया वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर आ गई थी, सब निराश थे। इसी बीच एक नई कैप्टन को जिम्मेदारी मिली, नाम था MS धोनी। और पहला ही टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप, यंग टीम, नए प्लेयर्स और फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ। आखिरी ओवर, सबकी सांसें रुकी हुई थी। धोनी ने जोगिंदर शर्मा पर भरोसा किया, रिस्क लिया और भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तब दुनिया ने पहली बार कहा, कैप्टन कूल। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला गाना।

यंग टीम, नए प्लेयर्स और फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ। आखिरी ओवर, सबकी सांसें रुकी हुई थी। धोनी ने जोगिंदर शर्मा पर भरोसा किया, रिस्क लिया और भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तब दुनिया ने पहली बार कहा, कैप्टन कूल। तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला गाना।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. तो हाँ, हम बात कर रहे थे MS धोनी जी के बारे में। चलिए कुछ मजेदार फैक्ट सुनते हैं। धोनी को बाइक्स और विंटेज कार्स का बहुत शौक है। उनके गैरेज में कई सुपर बाइक्स और क्लासिक गाड़ियां हैं। उन्हें इंडियन आर्मी से भी खास लगाव है और उन्हें हॉनरी लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि भी मिली। क्रिकेट के अलावा उन्हें बैडमिंटन और फुटबॉल भी पसंद है। और एक बात है जो हर फैन जानता है, उनका हेलीकॉप्टर शॉट। ये शॉट दुनिया भर के बॉलर्स के लिए एक पहेली बन गई। आगे बढ़ते हैं अगली ट्रैक की ओर।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. You are listening to Akashvani 101.9. तो या धोनी ने हमें सिर्फ ट्रॉफीज नहीं दी है, उन्होंने हमें सिखाया है कि प्रेशर में कैसे शांत रहना चाहिए और जीत में विनम्र कैसे रखना चाहिए और हार के बाद भी मुस्कुराना कैसे है। आज उनका बर्थडे पर हम सब की तरफ से एक ही दुआ है, आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी तरह हर जनरेशन को इंस्पायर करते रहिए। आखिर में एक लाइन, कैप्टन सिर्फ टीम को लीड नहीं करता है, कैप्टन अपनी सोच से पूरी जनरेशन को इंस्पायर करता है और MS धोनी उसी इंस्पिरेशन का नाम है। तब तक क्रिकेट का जुनून बनाए रखिए और माही की तरह जिंदगी में भी बार बार जो भी चैलेंज हो वो मुस्कुरा कर फेस कीजिए। We all wish you a very happy birthday, MS Dhoni ji. Jai Hind. तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला ट्रैक।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Well, welcome back, listeners. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM Rainbow हैदराबाद. तो हाँ, अब हम बात करेंगे उस शख्स की जिन्होंने सूफी अंदाज की पहचान बना दी, कैलाश खेर. उनकी आवाज किसी ट्रेन क्लासिकल सिंगर जैसी नहीं लगती और शायद इसी वजह से वो इतनी यूनिक है. उन्होंने अपना एक अलग स्टाइल बनाया जिसमें फोक, सूफी और इंडियन क्लासिक का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है. कैलाशा नाम का उनका म्यूजिक बैंड भी काफ़ी फेमस है. लाइव कॉन्सर्ट्स में लोग सिर्फ गाने नहीं सुनते बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेकर घर लौटते हैं. अब बात करते हैं उनकी कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स की, जैसे कि अल्लाह के बंदे, तेरी दीवानी, सैया, चांद सिफारिश. हर गाने का मूड अलग है लेकिन एक बात कॉमन है, हर गाना सीधा दिल तक पहुंचता है. उनके गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशंस भी है. चलिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स भी सुन लेते हैं. कैलाश खेर ने 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं. उन्होंने बॉलीवुड के अलावा रीजनल सिनेमा के लिए भी प्लेबैक किया है. उनकी सिंप्लिसिटी फैंस को बहुत पसंद आती है. वो स्पिरिचुअली और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं, जैसे कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान वो ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं. तो चलिए सुनते हैं इनके गाने अगली छोटी सी एड के बाद.
2: ఎల్ఐసి వారి భీమాలక్ష్మి మహిళలకు ఆకర్షణీయమైన ప్లాన్, చిన్నపాటి పొదుపుతో పెద్ద ప్రయోజనం పొందండి.

वेलकम बैक। वो थे कैलाश के जी के अमेजिंग गाने। जी आज हम सब मिलकर उन्हें विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे। हम दुआ करते हैं कि वो इसी तरह अपनी सोलफुल आवाज़ से हमें इंस्पायर करते रहें और इंडियन म्यूज़िक को दुनिया भर में और भी ऊंचाइयों तक ले जाए। एक छोटी सी बात है, म्यूज़िक सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, म्यूज़िक महसूस करने की चीज़ है। और कैलाश के जी के गाने इस बात के सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल हैं। वेल, हेलो रेनबो का वक्त होने वाला है और आज का टॉपिक ये है कि आप लोगों को रेनी सीजन पसंद है या समर। तो इन दोनों सीजन में किसी एक सीजन का एक छोटी सी याद या कुछ मेमोरी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो उसे शेयर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0402323-0030, 0402323-4821 और 0402970-4715 पर। सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9।

0: वेल वेलकम बैक, हमारी अगली कॉलर से बात करने का वक्त आ चुका है। हेलो
1: गुड आफ्टरनून मैडम
0: जी। गुड आफ्टरनून, आपका नाम?
1: ओम शांति जी, नमस्कार जी। मेरा नाम पोली सिटी मेहर बाबा जूबली से बात कर रहा हूँ मैडम
0: जी। स्वागत है आपका हेलो रेनबो में जी। आज का टॉपिक आपने सुना है?
1: जी, सुनते रहता है जी मैडम। अपना कॉलर में वो लेटी प्रभा कर रहा हूँ जी। कॉमेडी एक्टर का जैसे अच्छे से बात करते हैं जी, उम्र ज्यादा है जी। बड़े भैया रवनय्या जी ओपू तो चला मंचिगा फोन कॉल चेस्तारु मैडम, वारिकी चला थैंक्स मैडम। ఇకపోతే మేడం మనకి సంవత్సరానికి 365 రోజులు కూడా మంచివే మేడం.
0: అవునండి,
1: వాటిలో 3 కాలాలు

0: वेलकम बैक लिसनर्स, हेलो रेनबो में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी अगली कॉलर से हम बात करेंगे। हेलो
1: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब मैडम जी।
0: जी, गुड आफ्टरनून जी। आज का टॉपिक आपने सुना है?
1: जी हाँ, मैं शेर खान बोल रहा हूँ तलाबकट्टा अमन नगर से, और सभी सुनने वाले भाई बहन और दोस्तों को प्यार भरा सलाम आदाब। दुआ करता हूँ अल्लाह से सबको खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: जी, स्वागत है आपका
1: आपका सवाल
0: आकाशवाणी में।
1: है
0: थी
1: मुझे कौन सा सीजन पसंद है, विन या समर?
0: जी,
1: जी मुझे बरसात वाला सीजन बहुत पसंद है मैडम, बारिश वाला।
0: ठीक है जी
1: बारिश और सर्दियों वाला जो सीजन है बहुत पसंद आता है,
0: जी
1: और बारिश की बहुत सारी मतलब लेके अभी तक बारिश के बहुत से वाकयात भी एक हसीन यादों की तरह दिल में बसे हुए हैं। जो बारिश में हम भीगते थे,
0: जी
1: कहीं खेलने को जाते थे तो बारिश झमाझम बारिश हो जाती तो भीगते हुए घर पे आते थे, छाता लेके जाते थे, छाता उल्टा हो जाता था हवा से,
0: जी
1: और बहुत सारी बारिशों की, और बारिश में एक सुकून लगता है जिसकी आवाज, उसकी एक ठंडक। अब मैं ब्लाइंड हूँ, मैं अभी बारिश होती है तो मैं थोड़ा अंदर दरवाजे में ठहर के अपने हाथों पे बारिश की बूंदों को लेता हूँ, थोड़ा कम बारिश रही तो भीग बाहर निकल के भीगता हूँ, फिर अंदर आ जाता हूँ। हाँ,
0: जी जी
1: लेकिन जब ज्यादा भी बारिश होती है तो अपने आप को एहतियातन बचाने की कोशिश भी करता हूँ कि भाई वायरल इन्फेक्शन, कोई जुकाम बुखार ना हो जाए, इसलिए
0: जी अच्छी बात है।
1: तो बारिश बहुत मौसम पसंद है। और अभी 4 दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने, सिद्दीक भाई है, उन्होंने गंडी पेट पे लेके भी गए थे घुमाने को, एक हरियाली जो मैं कई सालों से तलाश कर रहा था कि मुझे हरियाली वाला एक हरियाली चाहिए, हरी भरी, और पानी की लहरों का आवाज चाहिए। वहाँ पानी की लहरें चल रही थी, ठंडी हवा और ग्रीन ग्रीन घास हरियाली जो थी उसमें बैठ के हम बहुत
0: जी
1: सारा एंजॉय करे। उन्होंने मेरे को लेके गए घुमाने को, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को।
0: जी जी
1: और मैडम एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट थी,
0: जी बताइए।
1: फिल्म का नाम है सफर, लता मंगेशकर की आवाज में है। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे।
0: जी, हम कोशिश करेंगे।
1: जी
0: धन्यवाद
1: मैडम,
0: हमसे जुड़ने के लिए,
1: ओके।
0: धन्यवाद। तो आप भी हेलो रेनबो में हमें कॉल करने के लिए 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402974715 पर आप कॉल करके ये बता सकते हैं कि आपको रेनी सीजन पसंद है या समर सीजन, और इन दोनों सीजन में से कोई ना कोई तो यादें आपसे जुड़ी ही रहेंगी। तो एक छोटी सी याद आप हमसे शेयर कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रैक की ओर।

0: सो वेलकम बैक, हेलो रेनबो में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे हमारे अगली कॉलर के साथ।
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ मैडम, आपका नाम क्या वाले मैडम?
0: जी, मेरा नाम अभिज्ञा है। जी, आपका नाम?
1: मेरा नाम मुमताज है, हस्तक्षेप से बात कर रही हूँ।
0: जी, आज का टॉपिक आपने सुना है?
1: हाँ सुना, बारिश के बारे में, मौसम के बारे में बोल रहे हैं
0: हाँ
1: ना?
0: जी हाँ, आपको कौन सा मौसम पसंद है?
1: मेरे को तो देखो मैडम, मैं तो बोलती हूँ हर मौसम का एंजॉय करना बोलती, क्योंकि
0: जी
1: ऊपर वाले ने हमको हर मौसम हमारे लिए ही तो रखे,
0: जी हाँ
1: तो इस हिसाब से तो बोलती मैं हर मौसम को मजा लेना, एंजॉय करना।
0: जी
1: और बारिश में भी अपने फैमिली के साथ चाय काफी, या और जैसे तलन की चीज होती ना,
0: जी
1: जो भी चीज तलन की वैसे चीज से चाय काफी से एंजॉय करना बोलती अपनी फैमिली के साथ, बारिश को देखते हुए,
0: जी
1: बारिश को निखारते हुए। और
0: जी
1: मैडम एक गाने की रिक्वेस्ट है, पुराने तो नहीं डालते होंगे ना?
0: जी
1: पुराने
0: हम कोशिश करेंगे जी, बताइए।
1: गाना पुराना शायद हो सकता, नाम चिराग होगा उसका नाम, चिराग दिल का जलाओ बहुत अंधेरा है, वो गाना है।
0: जी मैं कोशिश करूंगी
1: अगर नहीं, अगर हो सका तो एक नया लगा दो, कौन सा भी दुआ वाला गाना। ठीक
0: जी, जरूर
1: है, शुक्रिया, बहुत बहुत
0: जी,
1: शुक्रिया।
0: धन्यवाद। सो वेल, विल हैव अ नेक्स्ट कॉलर।
1: मैडम
0: हेलो
1: गुड आफ्टरनून,
0: जी, गुड आफ्टरनून, आपका नाम?
1: मेरा नाम महिजा बेन है, सोशल वर्कर, स्पेशल वर्ल्ड से बात कर रही हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका हेलो रेनबो में। आज का टॉपिक आपने सुना है?
1: हाँ, सुनिए, बारिश बारिश पसंद, परसों बहुत तेज बारिश हुई थी, देखो थोड़े दिन पहले तूफानी,
0: जी
1: उससे
0: हाँ
1: आंगन खुला है हमारा, आसमान के नीचे बैठ के बर्तना धोई मैं, अच्छे बोलते बारिश बहुत पसंद। रोड पे भी जाती थी पहले तो मैं रुकती नहीं थी, तो बाजू पैर से मैं चलते रहती, आइसक्रीम खाना, बर्फ खाना, ठंडे में ठंडा खाना, हमारे बाबा बोलते थे, फौजी
0: जी
1: थे हमारे बाबा, गर्मी में गर्म, शरद में शरद समझो, वैसा अच्छा दिखता, अच्छी रखे काफी। जयसान
0: जी जी
1: भाई का दालो ना गाना उन्होंने बहुत दिन से बोल रहे हैं,
0: जी बताइए।
1: अब बोले ना उन्होंने, जिनके सहारे हुए ना हमारे बोलते, बोले ना लता मंगेशकर की,
0: जी, हम कोशिश करेंगे
1: डाल दो, बहुत दिनों से बोल रहे हैं, अकेले रहते घर में उन्होंने।
0: जी
1: ठीक है,
0: जी धन्यवाद। हेलो
2: हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम जी,
0: जी, गुड आफ्टरनून
2: मैं तेलुगु में बात कर रहा हूँ।
0: जी, आपका नाम?
2: मेरा नाम कीर्ति राजकुमार, आदर्श नगर निजामाबाद से मैडम जी।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का टॉपिक आपने सुना है?
2: हाँ सुना है मैडम जी।
0: जी, बताइए।
2: ये बरसात के मौसम में स्कूल के टाइम में बिकना और बैग लेके घूमना,
0: जी
2: और ये जो रहता ना मैडम, मक्का भुट्टा लोग आते थे, अच्छा,
0: जी जी
2: और आलू बुखार, खजूर, और ये फल जो आता है अभी ये टाइम में, वो बहुत खाइश थे मैडम।
0: जी हाँ
2: गरम गरम खाना पसंद है, आलू भज्जी खाना पसंद है, ये टाइम में रिम झिम बरसे पानी, ऐसा गाने भी सुनता है रहता हूँ मैं।
0: जी हाँ
2: यही बात में बहुत मजे आता है मेरे को।
0: जी, धन्यवाद कॉल
2: थैंक यू
0: करने के लिए,
2: मैडम,
0: धन्यवाद।
2: थैंक यू मैडम जी।
0: जी हाँ, सुनते रहिए आकाश।

0: वनी हैदराबाद।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: बोलो इसमें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt to rainwater harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct bore wells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 9:30 हो चुके हैं।

नैरंग प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में हमारा पुरखलूस आदाब। दोस्तों, आज के नैरंग प्रोग्राम में हम पेश करेंगे सबसे पहले हरफ ताबिंदा, तहरीर होगी मोहतरमा आयशा बतूल की। बेदारी कायनात सिलसिले में साइंसी तकरीर नशर करेंगे जनाब मोहम्मद नूरुद्दीन। मौजू होगा जदीद साइंसी ऐजादात। गीत सुरेले गाता चल, पुराने फिल्मी गीतों से जुड़ा यह हसीन और खूबसूरत प्रोग्राम आप तमाम की समातों की नजर किया जाएगा। दोस्तों, नैरंग प्रोग्राम के आखिर में पयाम शब। आज की शब का पयाम जैदी से आप सुनेंगे।

0: तो आइए दोस्तों, आगाज पर सुनते हैं हर्फ तावेंदा। तहरीर है मोहतरमा आयशा बतूल की।
1: ज़मीर की आवाज़ नेकी और बदी, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करती है। ये एक अख़लाक़ी रहनुमा का काम करती है, जो अच्छे काम पर हौसला अफज़ाई और बुरे काम पर मलामत करती है। ज़मीर सुकून ख़ल्फ़ की ज़मानत है, और अगर ज़मीर मुर्दा हो जाए तो फिर ये इंसान को इंसानियत के दर्जे से गिरा देता है। कहने के तो ज़मीर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब दिल, ख्याल या फिर भेद है। ये एक अंदरूनी क़ुव्वत है, जो इंसानी आमाल का मुहासिबा करती है। जब इंसान कोई अच्छा काम करता है तो ज़मीर खुशी और इत्मीनान महसूस करता है, लेकिन जब गलती या गुनाह हो जाए तो ज़मीर मलामत करता है और इंसान को अंदर ही अंदर कचोके लगते हैं। ये खुदा की जानिब से इंसान के अंदर रखा गया एक ऐसा जज है, जिसे रिश्वत या सिफारिश से खरीदा नहीं जा सकता। ज़मीर बेदार भी होता है और मुर्दा भी होता है। बेदार ज़मीर इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा असासा है। जिस शख्स का ज़मीर जिंदा हो, वो कभी भी जानबूझकर किसी का हक नहीं मारता, झूठ नहीं बोलता, जुल्म नहीं करता। बेदार ज़मीर वाले इंसान को मुआशरे में इज्जत और एहतराम मिलता है। ऐसे लोग मुश्किल हालात में भी हक का साथ देते हैं, क्योंकि उनके अंदर की आवाज़ उन्हें बेमानी से और हक तलफी से रोकती है। जब इंसान बार बार गुनाह करता है और ज़मीर की मलामत को नज़रअंदाज करता है, तो समझ जाएगा कि ज़मीर मुर्दा हो गया है। मुर्दा ज़मीर वाला इंसान नेकी और बदी में फ़र्क ही नहीं कर पाता, और जुल्म सितम में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती। ऐसा शख्स मुआशरे के लिए नासूर बन जाता है। ज़मीर को हमेशा बेदार रखना चाहिए, क्योंकि ये कामयाबी की कुंजी है। अगर हम दुनिया और आखिरत में सुकून चाहते हैं, तो हमें अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए और अखलाकी उसूलों पर कायम रहना चाहिए। बकौल शायर, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है।
0: मोहतरमा आयशा बतूल।

0: ज़मीर मौजू पर हर्फ ताबिंदा पेश कर रही थी। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं बेदारी कायनात सिलसिले में जदीद साइंसी ईजादात। इस मौजू पर जनाब मोहम्मद नूरुद्दीन से साइंसी तकरीर।
1: बेदारी कायनात सिलसिले के तहत आपकी खिदमत में पेश है साइंसी तकरीर, और आज की तकरीर का उन्वान है जदीद साइंसी इजादात। सामाइन, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर इस बात पर गौर ही नहीं कर पाते कि हम नाकाबिले यकीन टेक्नोलॉजी के दरमियान घिरे हुए हैं, और ज़िंदगी को आसान बनाने वाली इन तमाम अशिया के पीछे किसी न किसी ज़हीन इंसान की मेहनत है। हमारे घर हों या दफातर, बैग हों या गाड़ी, ये सब की सब अशिया हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए बनाई गई हैं, और हम चाहे इस पर ज़्यादा ध्यान ना भी दें, तब भी हकीकत ये है कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे बहुत से लोगों की गैर मामूली ज़हानत, किस्मत और उनको मिलने वाले मौक़े हैं जिन्होंने हमारी जदीद दुनिया को तश्कील दिया है। आइए जानते हैं हाल ही में हुए चंद जदीद साइंसी इजादात के बारे में। तारीख़ के हर दौर में नई इजादात ने इंसानी ज़िंदगी को यकसर तब्दील किया है। मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की की बदौलत कई इनकलाबी इजादात सामने आई हैं जिन्होंने हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान और मौसर बना दिया है। मसनवी ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मसनवी ज़हानत आज के दौर की सबसे बड़ी ईजाद समझी जा रही है। एआई ने मुख्तलिफ शोबों जैसे सेहत, तालीम, कारोबार और हत्ता के फ़नून लतीफ़ा में भी इनकलाब बरपा कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी इंसानी ज़हानत की नकल करती है और स्मार्ट एल्गोरिथम्स के ज़रिए फ़ैसला साजी में मदद देती है। चैटबॉट्स, खुदकार गाड़ियाँ और तस्वीरी पहचान के निज़ाम मसनवी ज़हानत के नुमाया इस्तेमालात में शामिल हैं। एआई की बदौलत कंप्यूटर्स बड़े डेटा सेट्स का तज़िया करके दुरुस्त पेश गोईयां करने के काबिल हो चुके हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, रिवायती कंप्यूटर्स की निस्बत हज़ारों गुना ज़्यादा रफ्तार पर पेचीदा मसाइल हल करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग एक ज़बरदस्त पेशरफ्त है। क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स पर काम करते हैं जो बैक वक्त मुतादद हिसाबी अमल अंजाम दे सकते हैं। गूगल और IBM जैसे इदारे क्वांटम कंप्यूटर्स को मज़ीद बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी, मेडिकल रिसर्च और दीगर साइंसी तहकीक़ में इनकलाब लाया जा सके। खुदकार गाड़ियाँ, ऑटोनोमस व्हीकल्स। खुदकार गाड़ियाँ एक ऐसी ईजाद हैं जो मुस्तकबिल में इंसानी ड्राइविंग की ज़रूरत को कम कर सकती हैं। टेस्ला, गूगल और दीगर बड़ी कंपनियां ऐसी गाड़ियां बना रही हैं जो AI सेंसर्स और पेचीदा अल्गोरिथम्स के ज़रिए बग़ैर ड्राइवर के चल सकती हैं। ये न सिर्फ ट्रैफिक हादसात को कम कर सकती हैं बल्कि सफ़र को मज़ीद आरामदेह और महफूज भी बना सकती हैं। क्रिस्पर जीन एडिटिंग, बायोटेक्नोलॉजी में क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग सिस्टम एक इनकलाबी ईजाद है जो जीनियाती बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से साइंसदान DNA में तरमीम कर सकते हैं और मौरूसी बीमारियों जैसे थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का इलाज मुमकिन बना सकते हैं। मुस्तकबिल में ये तरीक़ा सरतान और दीगर लाइलाज बीमारियों के लिए भी उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। 5G इंटरनेट टेक्नोलॉजी, 5G नेटवर्क जदीद दुनिया की तेज तरीन इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जो वायरलेस कनेक्टिविटी को पहले से कई गुना ज़्यादा रफ्तार देती है। इसकी बदौलत खुदकार मशीनें, स्मार्ट जैसी इजादात को शहरों

0: और इंटरनेट ऑफ थिंग्स मजीद मौसिर बनाया जा रहा है। इसकी आमद से वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और रिमोट वर्किंग में बेपनाह सहूलत पैदा हुई है। बायो प्रिंटिंग, 3D बायो प्रिंटिंग एक हैरान कुन ईजाद है जिसकी मदद से जानदार बाफ्तें, टिश्यूज और हत्ता के इंसानी अज़ा भी तख्लीक किए जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में अज़ा की पैवंदकारी में इनकलाब ला सकती है और उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है जो नए अज़ा के मुंतजिर होते हैं। इस ईजाद की मदद से जिल्द, जिगर और दिल जैसी इंसानी बाफ्तें मसनवी तौर पर बनाई जा सकती हैं। सोलर तवानाई में तरक्की, एडवांसमेंट इन सोलर एनर्जी। दुनिया में तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी में बेहद तरक्की हुई है। हालिया बरसों में सोलर पैनल्स की कीमत में कमी आई है, जबकि उनकी कारकर्दगी में बेहद इजाफा हुआ है। स्मार्ट सोलर ग्रिड्स और बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स ने सोलर एनर्जी को मजीद मौसर और माहौल दोस्त बना दिया है। शमसी तवानाई मुस्तकबिल में तवानाई का सबसे बड़ा जरिया बनने की सलाहियत रखती है। मेटावर्स, मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जहां लोग डिजिटल अवतार्स के जरिए बाहमी रवाबित कायम कर सकते हैं। फेसबुक, मेटा और दीगर कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं ताकि वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए एक नए डिजिटल माहौल में ले जाया जा सके। मेटावर्स के जरिए तालीम, काम और तफरी के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। हाइपरसोनिक प्रोपल्शन स्पेस टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई जहत मुतारफ करवाई है। स्पेसएक्स, नासा और दीगर खलाई इदारे ऐसी रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो खला में तेजी से सफर कर सके। इस ईजाद के जरिए मुस्तकबिल में मरीख और दीगर सैयारों पर पहुंचना आसान हो सकता है और इंसानों के लिए बैनुल सैयाराती सफर मुमकिन बन सकता है। रोबोटिक्स और इंसानी मशीन इंटरफेस, रोबोटिक्स एंड ह्यूमन मशीन इंटरफेस। रोबोटिक्स और इंसानी मशीन इंटरफेस HMI की तरक्की ने इंसानी जिंदगी के कई पहलुओं को बदल कर रख दिया है। जदीद रोबोट्स न सिर्फ कारखानों में बल्कि घरेलू कामों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा दिमागी सिग्नल्स के जरिए रोबोट कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी भी तरक्की कर रही है, जिसकी मदद से माजूर अफराद मसनवी आज़ा को बआसानी चला सकते हैं। ये तमाम इजादात इंसानी तरक्की के नए उफक खोल रही हैं और मुस्तकबिल की दुनिया को ज़्यादा मौसर, महफूज और सहूलत बख्श बना रही हैं। मसनवी जहानत, क्वांटम कंप्यूटिंग और खुदकार टेक्नोलॉजीज जैसे जदीद इख्तिरात दुनिया को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रही हैं जहां जिंदगी के हर पहलू में जिद्दत और तरक्की का उनसर शामिल होगा। ये कहना गलत ना होगा कि आने वाले सालों में ये इजादात दुनिया को एक बिल्कुल नई सिमत में ले जाएंगी।
1: बेदारी कायनात सिलसिले में जनाब मोहम्मद नूरुद्दीन से जदीद साइंसी ईजाद मौजू पर तकरीर अभी आप सुन रहे थे। आइए दोस्तों, अब चलते हैं पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत सुरेले गाता जा की जानिब। दोस्तों, दिल की दुनिया को महकाने, यादों के दरीचे खोलने और बीते हुए सुनहरे जमाने की हसीन फजाओं में ले जाने वाला प्रोग्राम गीत सुनहरे गाता जा। इस प्रोग्राम में आप सबका दिल की गहराइयों से खैर मुकदम है। आज की ये महफिल उन लाजवाल नगमों के नाम है जिनकी धुनें आज भी दिलों को सुकून बख्शती है, जिनके बोल मोहब्बत, वफा, उम्मीद और जिंदगी के खूबसूरत रंगों से आशना करते हैं और जिन्हें सुनते ही माजी की बेशुमार हसीन यादें आंखों के सामने जिंदा हो जाती है आइए

चंद लम्हों के लिए आज की मसरूफ जिंदगी से निकलकर इस सुनहरे दौर में चलते हैं, जहां मौसिकी में मिठास थी, शायराई में गहराई थी और आवाजों में ऐसा शेर था जो बरसों बाद भी दिलों पर अपनी छाप छोड़ देता है। तो आइए मोहब्बत, एहसास और यादों से सजी इस खूबसूरत महफिल का आगाज करते हैं। दिलों को तरोताजा कीजिए, लबों पर मुस्कुराहट सजाइए और हमारे साथ गुनगुनाइए।

तेरे बिना भी क्या जीना। जी हाँ दोस्तों, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से लिया गया गीत अभी आपने सुना। आइए अब देखते हैं पर्दे के पीछे कौन छुपा है। अगर पर्दा हट जाए तो देखते हैं कितने राज फाश होते हैं। हाँ, फिल्म शिकार से लिया गया गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिएगा।

दोस्तों, अभी आपने फिल्म शिकार से लिया गया गीत समाप्त किया। पर्दे में रहने दो। आइए अब सुनते हैं फिल्म शराबी का ये गीत। दोस्तों, मोहब्बत की दुनिया में कभी दिल धीरे से अपनी बात कहता है और कभी शोखी व शरारत से अपने जज्बात का इजहार करता है। अब पेश खिदमत है एक ऐसा ही दिलकशी और जिंदा दिल नगमा जिसकी धुन सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है और पुराने फिल्मी मौसीकी के सुनहरे दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आइए मोहब्बत भरे अंदाज में सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीत सुरेले गाता जा, पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम, जो कि उर्दू प्रोग्राम नैरंग में पेश किया जा रहा है। हम आपको बता दें दोस्तों कि उर्दू प्रोग्राम नैरंग रोज़ाना शब 9:30 बजे से 11 बजे शब तक पेश किया जाता है, जिसमें अदबी, साइंसी, सकाफती प्रोग्राम के साथ साथ डॉक्टर माइक पर सिलसिले में डॉक्टर से गुफ्तगु आपको करवाई जाती है। उससे हट के मालूमती मजामीन भी इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, गीत सुरेले गाता चल सिलसिले में पुराने फिल्म गीत आप तक पहुंचाए जाते हैं। आइए यही सिलसिले में आगे सुनते हैं फिल्म नीलकमल से लिया गया गीत। दोस्तों, प्यार, ईसार और वफा जब अपनी इंतहा को पहुंच जाएं तो वो सिर्फ एक जज्बा नहीं रहते, बल्कि पूरी जिंदगी का फलसफा बन जाते हैं। आज का ये लाजवाल नगमा भी इसी एहसास की खूबसूरत तर्जमानी करता है कि जिंदगी की असल खुशी खुद गर्जी में नहीं, बल्कि किसी के दुख सुख का साथी बनने में, मोहब्बत बांटने और खलूस के साथ जीने में है। वक्त बदल गया, अंदाज बदल गए, मगर ऐसे गीत कभी पुराने नहीं होते। उनके बोल दिल को छू लेते हैं और उनकी धुन बरसों बाद भी यादों के दरीचे खोल देती है। तो आइए सुनहरी दौर के इस शाहकार नगमे से अपनी महफिल को मौत्तर करते हैं।

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत सुरेले गाता जा। इसी सिलसिले में अगला गीत हमने लिया है दोस्तों। पुराने फिल्मी गीतों की खास बात यह है कि इनमें सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि शौकी चंचलपन, देहाती जिंदगी और शहरी अंदाज का हसीन इम्तिजाज भी मिलता है। आज का ये नगमा भी इसी रंग में रंगा हुआ है जहां मासूम शरारत, दिलकश अदा और

दिल को लुभाने वाली मौसिकी एक साथ सुनने को मिलती है। ये वो दौर था जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे दोस्तों, बल्कि गुनगुनाए भी जाते थे, और उनकी धुनें बरसों तक दिलों में बसी रहती थी। तो आइए, मुस्कुराहटों और दिलकश अंदाज से भरपूर इस खूबसूरत नगमे से लुत्फ अंदोज होइए।

दोस्तों, पुराने फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी है। आइए अब सुनते हैं फिल्म जहर से लिया गया गीत। साथियों, बाज नगमे सिर्फ सुने नहीं जाते, दिल की धड़कनों में उतर जाते हैं। जब मोहब्बत अपनी इंतहा को छू ले तो इंसान दुनिया की हर चमक को बेमाना समझने लगता है। ऐसे ही बेलौस जज्बे इश्क, वारफ्तगी और वफा का तर्जुमान है ये खूबसूरत नगमा, जिसके हर लफ्ज़ में दिल की सच्चाई और हर सुर में मोहब्बत की खुशबू बसी हुई है। समातों को मोहब्बत के रंग में रंगने के लिए पेश खिदमत है। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, जो कि पेश किया जाता है रोज़ाना शब 9:30 बजे से 11 बजे शब तक। इसी नए रंग प्रोग्राम में सिलसिला है गीत सुरेले गाता चल का। आइए इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आप सुनते हैं दोस्तों, फिल्म पाकीज़ा से लिया गया गीत मोहब्बत। जब मंजिल बन जाए तो रास्तों की दुश्वारियाँ भी खूबसूरत लगने लगती हैं। दो दिल जब एक ही ख्वाब की ताबीर बन जाएं तो हर सफ़र यादगार हो जाता है, हर मोड़ उम्मीद का पयाम देता है और हर कदम साथ निभाने का अहद बन जाता है। इसी हसीन और एहसास रफाकत और मोहब्बत और हम सफरी को अपने दिलकश अंदाज में पेश करता है यह लाजवाल फिल्मी नगमा।

चलो दिलदार, चलो चांद के पार, चलो दोस्तों आइए फिल्मी गीतों के सिलसिले को जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म मदर इंडिया से लिया गया गीत। जिंदगी कभी खुशियों की धूप बिखरती है तो कभी आजमाइशों की छांव ले आती है, मगर दोस्तों हौसला रखने वाले लोग हालात से घबराते नहीं, बल्कि हर मुश्किल को अपनी नई ताकत के साथ कबूल करते हैं। यही जिंदगी का हुस्न है कि हर रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है और हर इम्तिहान के बाद आसानी की उम्मीद बाकी रहती है। इसी हौसले, हकीकत जिंदगी और जीने के अज़्म को पैगाम देता है ये लाजवाब फिल्मी नगमा। आइए सुने।

कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। रिश्तों को सिर्फ दिल में रखने के बजाय उनका इजहार भी जरूरी है। खामोशी बाज़ औक़ात मोहब्बत से ज्यादा बेरुखी का तासुर देती है। अगर किसी से ताल्लुक हो, उसकी फिक्र हो या उससे तवक्कयात वाबिस्ता हो, तो मुनासिब अंदाज में अपने जज्बात का इजहार करना चाहिए। रिश्ते सिर्फ दिल में नहीं, रवैयों और अल्फाज में भी नजर आने चाहिए। मोहब्बत, ताल्लुक और खुलूस का इजहार करते रहो, क्योंकि मुसलसिल खामोशी कभी कभी फासले पैदा कर देती है। गिला हमेशा दुश्मन से नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर वही शख्स शिकायत करता है जिसके दिल में ताल्लुक और अपनाइयत होती है। इसीलिए अपने अजीज रिश्तों की कदर करो और उनसे राब्ता व इजहार बरकरार रखो।

पाया मैं शब, अभी आप सुन रहे थे इसी पर दोस्तों उर्दू प्रोग्राम नैरंग, अब ख़त्म होता है कल शब 9:30 बजे नैरंग प्रोग्राम की एक और बज़म के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, शब बख़ैर।

0: यह आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। चंद निलमों में हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को

0: और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे आर्थिक गतिविधियों की और शेयर बाजार पर चर्चा भी करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं अर्जुन से हेडलाइंस।
0: Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex drops over 100 points. Nifty settles below 24,400. Most Asian stock market indices end in the negative territory. And India and Indonesia exchange MOUs in areas including critical minerals, defense and emerging technologies.
1: घरेलू शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 100 से अधिक अंक लुढ़का। निफ्टी 24,400 से नीचे बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट देखी गई और भारत तथा इंडोनेशिया ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Desh ke pramukh शेयर सूचकांक आज अपनी शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख सके और कारोबार के अंत में लाल निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 104 अंक गिरकर 78,181 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 32 अंक लुढ़क कर 24,399 पर आ गया। दोनों सूचकांकों में 0.1% की गिरावट आई। विस्तृत शेयर बाजार भी नुकसान के साथ बंद हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप सूचकांक में 0.3% की सुस्ती देखी गई और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% से अधिक की गिरावट आई। बाजार आज अच्छी शुरुआत के साथ खुले थे और सत्र के अधिकांश समय बढ़त के साथ कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के अंतिम घंटे में मुनाफा वसूली और वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेत मिलने से नुकसान देखा गया।
0: Benchmark domestic equity indices gave up the initial gains and ended on a negative note today. Sensex dropped by 104 points to close at 78,181. Nifty dipped by 32 points to settle at 24,399. Both the stock market indices dropped 0.13%. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.3%, while the small-cap 100 index lost more than 0.5%. Earlier, the markets opened on a positive note and traded with gains for most of the session. However, both the stock market indices lost momentum in the final hour of trade, weighed down by profit booking and weak global cues.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 16 कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में ट्रेंड सर्वाधिक 12.4% के नुकसान में रहा। वहीं अडानी पोर्ट्स में 1.6% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 1.5% से अधिक की गिरावट आई। उधर अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनी के शेयरों में HCL टेक ने 3.1%, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस 2.8% तथा टाइटन ने 2.6% से अधिक का उछाल दर्ज किया।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 20 out of the 25 sectors ended in negative zone. Among the key laggards, capital goods shed over 1.7%, realty fell 1.6% and industrials lost 1.5%. In contrast, focused IT jumped more than 2.2%, IT rose 2.1% and consumer durables added over 0.6%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,633 companies declined, 1,599 companies advanced and 165 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 44 पैसे मजबूत होकर ₹94.96 पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 100.87 पर कारोबार कर रहा था। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बाजार की शुरुआत अच्छी बढ़त के साथ हुई थी, लेकिन आखिरी के घंटे में बिकवाली देखने को मिली, तो आपकी नजर में इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह

0: major interventions, but certainly, as I said, it has slowed down the pace. Right now, I don't think that they are trying to push to ensure that there is rupee appreciation. I think that is something that is happening. Naturally, it's one of the factors, because one of the factors is definitely the fact that, you know, oil prices have come down. It's quite a relief to the Indian economy, to the government, obviously, that they have come down to pre-war levels.
1: सुषमा, अगर मार्केट को थोड़ा सा फिर से एक बार देखें तो आज कैपिटल गुड्स की बात करें, रियल्टी की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत गिरावट हमें देखने को नजर आई है। तो क्या ये अभी हाल फिलहाल की से कमजोरी मान सकते हैं या फिर आगे भी इन सेक्टर्स में ऐसे ही दबाव बने रहने की आशंका आपको लगती है?
0: देखिए, कुछ सेक्टर्स में दबाव तो बनेगा। अब रियल्टी सेक्टर एक है जिसके बारे आपने बात की, और कैपिटल गुड्स हैं। पर खैर, ये तो पोटेंशियली

0: आपने बात की और कैपिटल गुड्स हैं, पर खैर ये तो पोटेंशियली पॉजिटिव सेक्टर्स हैं और रियल्टी सेक्टर का रिवाइवल अभी हाल ही में हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये शॉर्ट टर्म वीकनेस होगा और आगे वाले दिनों में शायद ये ठीक हो जाएगा.
1: Sushma, you mentioned about global cues, oil market being one of them, the Strait of Hormuz opening up, and clearly that 60-day window is vital for the flow of oil and gas and even other goods like sulfur for the manufacture of fertilizer. What about steel? Because right now, experts are giving the opinion, like yourself, that there's going to be a glut, a surplus of steel, which is why the prices of steel and steel products will come down. Nifty Metal actually fell by 1.1% today. What are the surprise areas we're likely to see in the markets now?
0: As far as steel is concerned, there may be a glut of steel per se, but India needs certain specialized varieties of steel, which actually it is not manufacturing right now, and therefore it is having to import these. And these are the steels that are required for moving into the area of electric batteries and electrification, which we are seeking to do in terms of renewable energy. So there are, you may get steel, there are steels and steels. So specialized steels is something that India needs to probably right now import and probably to manufacture ultimately, because that's an area where people are now talking about as being somewhat a weakness in our economy, and we have to look at ramp up manufacturing here.
1: Along with that, there is also moves to substitute copper with aluminium, because aluminium is lighter and the design of manufactured components, especially in the EV space, is being looked at very seriously. That is another way of bringing down the price of copper, which has actually gone up because aluminium is still fairly affordable right now. So do you see a lot of changes right now in terms of valuation in the metal sector?
0: Yes, definitely. I mean, metals is going to be a very, very important sector. I mean, you talked about copper, aluminum, you know, all the metals right now in recent times, the prices have gone up because the requirement of all these metals in high-tech products, in components, whether it is, you know, it may be silicon chips, you may need very tiny quantities of these metals, but these are required. And of course, copper prices have gone up. So yes, there would be effort to try and seek alternatives, like in the case of aluminum. Aluminum is an area that India has sufficient production, and that would be certainly helpful if we can do that, we can replace copper with aluminum in a lot of manufacturing areas.
2: सुषमा, आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी गिरावट का रुख हमें देखने को मिला है, तो इस स्थिति में जहां पर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में एक थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड हमें देखने को मिला है, तो ऐसे में निवेशकों को क्या ध्यान रखना चाहिए इन चीजों पर?
0: देखिए, निवेशकों को ये देखना चाहिए, ये सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नहीं, पर खैर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये ब्लू चिप शेयर्स नहीं है, ब्लू चिप कंपनीज नहीं है. इनमें उनको आगे की लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जो है कि जिस इंडस्ट्री में है वो देखना है. और ये जो जो स्टॉक जो आपने चुना है, इसका इनकी जो मार्केट है वो कैसी है और प्राइस अर्निंग रेशियो, ये जो चीजें हैं थोड़ी सी डिटेल में उनको देखना चाहिए. और लॉन्ग टर्म इसका पर्सपेक्टिव होना चाहिए. अगर आप खैर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप रेगुलर रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखकर ही एक कंपनी चुननी चाहिए.
2: सही समय है ये. सही समय है ये.
0: देखिए, हर समय सही है. इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि इंडिया मार्केट मार्केट लगता है कि अभी बढ़ने वाला है, सारे एनालिस्ट यही कहते हैं. तो ये पोटेंशियल हमारी मार्केट का बहुत ज्यादा है, असेसमेंट यही चल रही है इस वक्त.
2: और एशियाई बाजारों की हम बात करें तो प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में आज गिरावट देखी गई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.9% नीचे आ गया, जिसमें चिप शेयरों में बड़ी गिरावट आई. कारोबार के पहले सत्र में कॉस्पी 8% से अधिक गिर चुका था. ताइवान का ताइएक्स आज 2.3% लुढ़क गया. वहीं जापान का निक्केई 2.1% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.2% गिर गया. हांगकांग का हैंगसेंग भी 0.5% नीचे आ गया.

0: सिंगापुर के स्टेट्स टाइम सूचकांक ने 1.6% की बढ़त दर्ज की। सुषमा जी, आज दक्षिण कोरिया कॉस्पी में जो गिरावट देखी गई, एक बड़ा संकेत इसे माना जा रहा है अन्य मार्केट्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि इस गिरावट का असर थोड़ा लंबा जाएगा या बस हाल फिलहाल के लिए कह सकते हैं सही है?
1: देखिए, वो मुश्किल कहना है कि वो लंबा जाएगा कि नहीं, पर मेरे ख्याल में ये जो इस वक्त एआई की जो सारी सारी की जो समझ लीजिए कंफ्यूजन जो है एआई के ऊपर, और एआई खैर चिप्स उनके साथ एआई के साथ बहुत लिंक्ड है, एआई और चिप्स इकट्ठा ही जाता है, तो और साउथ कोरिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल सेंटर है चिप मैन्युफैक्चर के लिए साउथ कोरिया और ताइवान, तो हमें ये मेरे ख्याल में ये लंबा तो मुझे नहीं लगता जाएगा, क्योंकि ये इस वक्त का जो कंफ्यूजन है वो जब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में खैर एआई स्टॉक्स तो इतने बड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो कंफ्यूजन मैं बात कर रही हूँ चाइना और यूएस के बीच में जो ट्रेड इश्यूज अभी भी सुलझाई नहीं गई हैं, अभी भी वो प्रॉब्लम्स हैं कि कौन से चिप्स अमेरिका जाने देगा चाइना तक, और चाइना अपने कर्ब्स अभी भी उन्होंने लगाए हुए हैं, तो ये टेंशन्स अभी चल रही हैं, और ये मेरे ख्याल ये दीज आर सॉर्ट ऑफ एक्सटेंडिंग टू अदर कंट्रीज।
2: At South Korea's Korea Exchange, the KOSPI that my co-anchor has asked you about, it plunged at 4.9%, and this is the very market where Samsung second quarter earnings have the revenue has exceeded Nvidia's 171 trillion US dollars is the revenue of Samsung in its second quarter. Its net profit has gone up by 19x. How does this happen in a market like Korea, developed country, where there is such a sharp correction?
1: But I don't think we should we must remember that all markets are susceptible to these kind of things, because if there's any bad news, all markets like the Indian market are sentiment driven, and South Korea is no exception. So if there was some kind of perception that there would be some damage to the chip industry, to the chip sector, the problems that they are facing, which I talked about, both Korea, Taiwan, US and China, all this confusion that is going on and the problems that they are facing. So these are perceptions, and markets are generally sentiment driven. So yes, this can happen. And of course, Samsung, the profitability that you're talking about is really amazing, even better than Nvidia. For us, Samsung and companies like LG, the way they have entered the Indian markets is also so amazing that we sort of, the Indian consumer more or less thinks of Samsung and LG as Indian companies. They don't think of them as Korean companies. So this is the achievement of the Korean conglomerates. And definitely, as you say, profitability levels are amazing. But every market is sentiment driven, and these things happen everywhere.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया की राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज जकार्ता में हुई वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि, इस्पात और उभरती प्रौद्योगिकी शामिल हैं। संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सहमति व्यक्त की है।
3: आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रिजिलियंस बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली बहुत ही जल्द इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से एकीकृत हो जाएगी। इससे कारोबार करना आसान होगा और यात्रा करने में भी सुविधा होगी। सुषमा, ये इस यात्रा से जुड़े मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये, प्रधानमंत्री की इस यात्रा से आर्थिक दृष्टि से भारत को किस तरह से लाभ मिलने वाला? दूसरा, यूपीआई जो हमारी भुगतान प्रणाली लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, बहुत से देशों के साथ हमारा एक टाई अप हो चुका है इसे लेकर के, अब इसका आप भविष्य कैसे देखते हैं?
1: देखिए, जो पहला सवाल है कि इसमें जो आर्थिक इसके जो इकोनॉमिक टाई अप जो है इंडोनेशिया

गीत फिल्म के इस गीत में जहां लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी मीत को बुला रहे थे, इसे आपने सुना भी कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत के अंतर्गत और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल में मैं अभिनीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

फिल्म कभी कभी से मुकेश के गाए इस गीत को क्रिकेट प्रेमी भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जोड़ के भी देखते हैं, जिन्हें ये काफी पसंद है और उनका आज जन्मदिन भी है। तो 7 जुलाई की तारीख बीतने से पहले हम उन्हें एक बार जन्मदिन की बधाई दे देते हैं और इसके साथ ही गीत मेरे मनमीत का ये सफर आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। अवनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित

0: करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को संबोधित किया। डॉ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। दोनों पक्षों ने सहमत कार्य बिंदुओं के लिए समय सीमा के साथ एक कार्यान्वयन योजना को भी अंतिम रूप दिया। सरकार ने स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के झूठे दावों के बारे में लोगों को सावधान किया है। ये संगठन दावा कर रहा है कि उसे युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मान्यता मिली हुई है। प्रेस सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा है कि यह दावा गलत है और साफ किया है कि मंत्रालय ने इस संगठन को कोई मान्यता या संबद्धता नहीं दी है। वायनाड के विपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में तीन लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे नौ मजदूरों को बचा लिया गया है। छह अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल विभिन्न क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। डॉ मिश्रा ने निर्देश दिया कि समग्र स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में ऐसी स्थिति बने रहने का अनुमान किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, sabka saath, sabka vikas. Aaj main yahi mantra, yahi bhavana lekar, Indonesia ke aap sabhi sansad sadasyon ke beech aaya. भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including

अकेले हम ही शामिल नहीं हैं इश्क के जुर्म में, अकेले हम ही शामिल नहीं हैं इश्क के जुर्म में, जब नजरें मिली थी ना तो तुम भी मुस्कुराए थे।

अब जिंदगी में कोई आए या जाए कोई परवाह नहीं, अब जिंदगी में कोई आए या जाए कोई परवाह नहीं, बस एक तेरा साथ मेरे जीने के लिए काफी है।

हम वफा की हर हद पार कर देंगे तुम्हारी चाहत में, हम वफा की हर हद पार कर देंगे तुम्हारी चाहत में, तुम मांग कर तो देखो हम खुद को भी हार देंगे तुम्हारी चाहत में।

प्यार उसे करो जो तुमसे प्यार करे, प्यार उसे करो जो तुमसे प्यार करे, खुद से भी ज्यादा तुम पे एतबार करे। तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, तुम बस एक बार कहो कि रुको दो पल, और वो उन दो पलों को तुम्हारा इंतजार करे।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अगले घंटे फिर आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान

0: बेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल पैनल को संबोधित किया। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और रवांडा ने सैनिक ट्रेनिंग, संयुक्त सैनिक एक्सरसाइज, मेडिकल सहयोग और रक्षा उद्योग के क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। ये निर्णय नई दिल्ली में दो दिनों तक चली दूसरी संयुक्त रक्षा कोऑपरेशन कमेटी की बैठक के दौरान लिया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विमुक्तु, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमता और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू कर रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के विभिन्न घटकों के तहत 110,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता दी गई है। इसमें शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य से जुड़ी पहलों को शामिल किया गया है। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में आज रात खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto.

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 3 सेकंड, और ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

धड़कनों से पूछो कि वो क्या गाती हैं, धड़कन से पूछो कि वो क्या गाती हैं, इस दिल पर तो बस हर पल वो तुम्हारा नाम लिख जाती हैं।

सादगी तुम्हारी देखकर तो कुदरत भी दीवानी है, सादगी तुम्हारी देखकर तो कुदरत भी दीवानी है, तुम्हें देख कलियों का मुस्कुराना तो बस एक छोटी सी निशानी है।

अब और ना आजमाओ मेरे सब्र को तुम, अब और ना आजमाओ मेरे सब्र को तुम, चले आओ कि अभी तन्हाई डराने लगी है।

दुआ है कि वक्त तुम्हारे सामने थोड़ा ठहर कर गुजरे, दुआ है कि वक्त तुम्हारे सामने थोड़ा ठहर कर गुजरे और जिंदगी का हर लम्हा तुम्हें एक नई मुस्कुराहट दे जाए।

0: मेरी दीवानगी की कोई हद न पूछो साहेब, मेरी दीवानगी की कोई हद न पूछो साहेब, मैं तो हवाओं से भी तुम्हारा पता पूछकर मुस्कुरा देता हूँ।
1: मुबारक हो सबको समाये सुहाना।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ऐसे एआई भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है जो सुरक्षित, भरोसेमंद और समावेशी हो। उन्होंने जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग की हाई लेवल प्लेनरी को

0: संबोधित किया। डॉक्टर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि एआई गवर्नेंस मानव केंद्रित, समावेशी और भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। भारत और कोस्टारिका ने आपसी व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा करने और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की पहली मीटिंग वर्चुअल माध्यम के जरिए की। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विमल आनंद और कोस्टारिका की फॉरेन ट्रेड की जनरल डायरेक्टर एड्रियाना कास्ट्रो ने की। बैठक के दौरान व्यापार और निवेश नियमों पर विचार साझा किए गए तथा आर्थिक जुड़ाव को और बढ़ाने के मौकों पर चर्चा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। मंत्री ने भरोसा जताया कि उपभोक्ताओं के लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी क्योंकि दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई बढ़ रही है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही। वायनाड के मेपर्डी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंगम के टेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common vision for the future. Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management IIM Bangalore to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious

दोस्तों, आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून किया है और अब सफ़र है रात सुरमई का। मैं अंजू एक बार फिर से आप सभी का करती हूँ बहुत बहुत स्वागत, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत कुछ इन अल्फाज के साथ। न जाने कैसी ये साजिश है इन बरसात की बूंदों की, न जाने कैसी ये साजिश है इन बरसात की बूंदों की, कि मेरा हर ख्याल मोड़ दिया तुम्हारी ही गलियों की तरफ।

एक छाता हो भीगी सी सड़क हो और हाथ में तेरा हाथ हो। एक छाता हो भीगी सी सड़क हो और हाथ में तेरा हाथ हो। फिर चाहे जमाना ठहर जाए, बस हमारी ये मुलाकात हो।

इन मदहोश हवाओं ने आज सारी हदें तोड़ दी हैं, इन मदहोश हवाओं ने आज सारी हदें तोड़ दी हैं, चुपके से आकर मुझसे ही तुम्हारा पता पूछ रही हैं।

दोस्तों, हमारे जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं हूँ आपके साथ अंजू और कार्यक्रम है रात सुरमई।

तुमको जिस कदर छाए हो मेरे इन ख्यालों पर, तुमको जिस कदर छाए हो मेरे इन ख्यालों पर, कि अब खुद से बात करूं तो यकीन मानो तुम्हारा ही जिक्र आता है।

तुम्हारी ये अदाएं भी जैसे कोई पुरानी नज्म है, तुम्हारी ये अदाएं भी जैसे कोई पुरानी नज्म है, जितनी बार भी सुनो हर बार एक नया मुकाम देती हैं।

से कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अब वक्त आ गया है चलने का और 3:10 से हम राही का सफर लेकर आएंगे आपके साथ अर्जित पांडे। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। और भी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया की सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। पाकिस्तान में दो वर्ष पहले सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा आपातकाल घोषित किए जाने के बावजूद 2 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चे अभी तक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं। इससे पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद विश्व में स्कूली बच्चों को शिक्षा से वंचित करने वाला दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने ये बात कही।

0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल हरियाणा के विभिन्न जिलों में ईंट भट्टों में कथित बंधुआ मजदूरी से जुड़े 86 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करेगा। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने इस वर्चुअल सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे। आयोग ने कहा है कि संबंधित अधिकारी अब तक की कार्रवाई की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इसमें बंधुआ मजदूरों की पहचान, उन्हें मुक्त कराए जाने और असंगठित श्रमिकों के लिए बनाए गए ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण की स्थिति शामिल होगी। वायनाड के मेपर्डे में कल्लाडी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेले जा रहे तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development and not expansionism.
2: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: Mr. Modi also stressed on expanding cooperation in digital public infrastructure, including UPI, artificial intelligence, education, startups and innovation to benefit people in both the countries. Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. The two leaders also witnessed the exchange of Memoranda of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. Mr. Modi was conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, by President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that a new chapter has been added to India's education sector with the approval for the Indian Institute of Management, IIM Bangalore, to establish an overseas campus in Indonesia. The proposal was approved by Prime Minister Narendra Modi during his visit to Indonesia. He added that the establishment of an overseas campus of such a prestigious institution marks a significant step towards globalizing India's knowledge traditions and education system. Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari said that ethanol blending program is a scientifically proven initiative that has delivered significant economic and environmental benefits. Addressing the Viksit Bharat Conclave in New Delhi yesterday, Mr. Gadkari defended the center's ethanol blending program, asking critics to show even one vehicle with the issues due to the mixed fuel. He asserted that no such incident has taken place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar stated that the India-Bahrain cooperation continues to deepen. Dr. Jaishankar concluded his 2-day visit to Bahrain last evening. During the visit, Dr. Jaishankar had an audience with Bahrain's King Hamad bin Isa Al

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

रोका कई बार मैंने, कोशिश करिए कि कोई बिना बात के नाराज ना हो, कोशिश करिए कि कोई बिना बात के नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हों, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप हो नाराज तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 3:17 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनू।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं,

कोई हो या ना हो मेरे पास, कोई हो या ना हो मेरे पास, पर ये रात तो है मेरे साथ। दिन में बहुत शोर है, दिन में बहुत शोर है, पर ये रात तो है बहुत ही शांत। हर कोई यहाँ सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, हर कोई यहाँ पर सिर्फ अपनी सुनाना चाहता है, सिर्फ ये रात है जो मुझे सुनती है तसल्ली के साथ। बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, बात जो मैं किसी से नहीं कर पाता, वो बात भी कर लेता हूँ इस रात के साथ, क्योंकि ये रात है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। और आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी अर्चित के साथ। 3:24 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

3:30 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझ रहे हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:36 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

किसी भी चीज़ की कीमत तब तक ही होती है जब तक वो हमें हासिल नहीं होती है। हासिल हो जाए फिर कहाँ उसकी कोई कीमत होती है। हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए, हासिल है जो उसे संभाल कर रखिए। जो आपको मिला है उसकी कीमत किसी के लिए आज भी बहुत होती है। 3:43 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे। समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ गए तो फिर कभी ना भूल पाओगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। जर्मनी के ब्रेमेन में बलूच नेशनल मूवमेंट ने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर बलूच लोगों के खिलाफ अत्याचार करने का आरोप लगाया। बलूच नेशनल मूवमेंट ने पड़ोसी देशों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से बलूचिस्तान की बिगड़ती स्थिति पर ध्यान देने और वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लद्दाख में सीमा सड़क संगठन की विभिन्न परियोजनाओं में निधि के दुरुपयोग से संबंधित चार आपराधिक मामलों में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि उसने बीआरओ, लद्दाख के एक सहायक अभियंता और कारगिल से दो श्रम आपूर्ति एजेंटों को गिरफ्तार किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम का व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये आम झारखंड के गुमला और देवघर जिलों की महिलाओं द्वारा संचालित 3 किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन कंपनियों का विकास बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये निर्यात जनजाति समुदायों और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। इसके जवाब में भारत की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रन पर सिमट गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, माहे और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, थोड़ा इंसान के अंदर भी झांक लीजिए। बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बुनियाद कितनी मजबूत है पहले वो पता कीजिए। दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है, दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है, सिर्फ सुंदर चेहरों पर जल्दी विश्वास ना कीजिए। जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, सिर्फ दिखावे के लिए अब दोस्ती न करिए।

लता मंगेशकर जी की आवाज में तुम ही मेरे मंदिर। ताउम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, ताउम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, मिली जब मंजिल तो पता चला असली सफर तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ भटक ही रहे थे। 4:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, कोशिशें तो आखिरी तक कीजिए सफल होने की, सफलता मिली तो ठीक वरना तजुर्बा तो मिल ही जाएगा। चार बजकर 24 मिनट हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

किशोर कुमार जी की आवाज में ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। जीवन में कोई भी चीज पूरी तरह से बेकार नहीं होती है, बेकार से बेकार चीज भी कभी न कभी किसी न किसी के काम आ ही जाती है। घड़ी चाहे बंद ही क्यों ना पड़ी हो, घड़ी चाहे बंद ही क्यों ना पड़ी हो, सारा दिन में एक बार सही समय जरूर बताती है। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में लगा ही रहता है, बस आपको है इसे ठीक से समझना। जब चढ़ रहे हो सफलता के शिखर पर तो कभी घमंड ना करना, और जब उतर रहे हो तो थोड़ा संभल कर चलना। 4:42 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

4:47 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखो। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखो। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:52 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

4:56 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बहरीन के बीच सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन की यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा की मौजूदगी में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने बहरीन के साथ द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि भारत ने कूटनीतिक बातचीत, समय पर नीतिगत कदम, घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अलग अलग स्रोतों से तेल आयात

पेड़ माँ के नाम अभियान टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन द नेशनल कैपिटल. स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, मिस्टर शाह सेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द दिल्ली गवर्नमेंट हैव रिजॉल्व टू फुली डेवलप 6,300 हेक्टेयर्स ऑफ ग्रीन रिच एरिया इनटू फॉरेस्ट लैंड ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स एंड इंश्योर इट्स प्रोटेक्शन. And in FIFA World Cup, Argentina defeated Egypt 3-2 in the round of 16 match in Atlanta. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 5:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। हटेगी धुंध जब सवेरा खिल कर आएगा, कोहरा चाहे कितना भी गहरा हो, धूप के आने पर छट ही जाएगा। निराशा के दरिया में गोते मत लगाइए, निराशा के दरिया में गोते मत लगाइए, धीरे धीरे तैरते हुए किनारा भी मिल जाएगा। 5:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं एक बार फिर से आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। इतना आसान नहीं हर ख्वाब पूरे हो जाएं, हर ख्वाब की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाएं ख्वाब, सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाएं ख्वाब, ये भी सिर्फ एक ख्वाब ही है। पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है।

छोटी छोटी खुशियों में खुश होना अब सीख लीजिए, छोटी छोटी खुशियों में खुश होना अब सीख लीजिए, किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार अब ना कीजिए, कोई बड़ा गम नहीं है इस बात की ही खुशी मनाइए, कोई बड़ा गम नहीं है इस बात की ही खुशी मनाइए, गम ऐ दुनिया में कितने हैं गमगीन यहाँ पर, विश्वास ना हो तो किसी से भी जाकर पूछ लीजिए। 5:00